जीव जंत उस पानी अंदर रहने वाले हैं, फिर तेन उन्होंने पहाड़ से जरूर व्यापदा होगा। इतनिया नदियां नाले निरंतर चल रहे जिन्हों का कोई अंदाजा नहीं, कितना पानी ते सारा पानी फिर जिस समुद्र से जाके पैंदा उदा कोई अंदाजा नहीं, फिर तेन उदा पार ते जरूर व्यापदा होगा। ते भाई साहब जी ने यह सवाल किया।

रब बोलते हजाई बोलते कौड़ा बोलते बादशाह आखते ने अगे ओदे लई जुत्तियां तैयार ने बादशाह गुरु नानक देव जी आखते उस मनुख दे सच्चे वचन की कदी गलत ना बोलो कदी कौड़ा ना बोलो हो सके तुहाडे नाल कोई कौड़ा बोले तां वी तुसीं मिठा बोलो बादशाह आखते दूजी गल है संतोख रखना मैनू रब मिल

था बालक मुस्कराया हैरान रह गई दौलतां दाई मेरे हथां विच अनेक बालक पैदा होए लेकिन ए तां कोई अनोखा ही बालक है दर्शन पा के दौलतां दाई धन हो गई सत सिगत बोलो श्री बधाई दीती से बार आई कोठरी विचों बधाई दीती मेहता जी वधायो तुहाडे घर तां कोई अनोखा ही बालक।

चारे पासे सुगंधी फैल गई है। मेरा मन कहिंदा ए कोई साधारण बालक नहीं है, ए ता कोई परमेश्वर दा उस अकाल पुरख वाहेगुरु दा कोई रूप ही तुहाडे घर आया है। सत सिमरत बोलो श्री। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने रात्रि दे तीसरे पहर दे आरंभ विच जन्म लिता। मैता कालू ने समा लिख लिया और जदो सवेरा होया अमृत वेले पंडित हरदयाल दे घर गया और कहन लगा रात मेरे घर बालक हुए है ते मैं चाहना हां उसकी जन्म कुंडली तैयार करो। पंडित हरदयाल उठ के बैठा, मेहता जी नु बिठाया कोल, कालू जी नु मेहता कालू नु कोल बिठाया, पुछया कितने बजे होया बालक, आखे तीसरे पहर दे आरंभ विच। जदो पंडित हरदयाल ने अपनी ज्योतिष विद्या दे नाल सारी जन्म कुंडली दा हिसाब बढ़ा के तैयार कीता ते जदो लिखन लगा ते कलम रुक गई। कहन लगा मेहता जी जे मैं लिखदा हां ता मेनू समझ नहीं आउंदी के मैं ठीक लिख रहा, क्योंकि और नहीं लिखदा ता मैं ए वेखदा के मेरी ज्योतिष विद्या कदे गलत नहीं हो, मेरे हिसाब नाल ए बालक दुनियावी बालक नहीं, ए ता परमात्मा दा रूप है। सत सगत बोलो श्री। ए प्रभु दा रूप है। मेहता कालू ने खुश होके पंडित हरदयाल नु इनाम वजो धन दिता और प्रसन्न होके घर आया। हुण चारे पासे माता तृप्ता नु मेहता कालू नु वधाइयां मिल रही हैं कि आज बालक ओ बालक पैदा होया है जिसका दर्शन करके सब दा तन मन ठर गया है। प्यारी सात सिंगत, आ बालक पता है कौन है? ए बालक आप नारायण कलातार जग में परवरे हो, आप नारायण दा रूप गुरु नानक सच्चा पातशाह है। सात सिंगत बोलो श्री। और जन्म किथे लिता? आखे तीन बेदियन की कुल बिखे, तीन बेदियन की कुल बिखे प्रगटे नानक राय, सब सिखन को सुख दे जैते भय सहाय। आज बेदी

मोती खाना छोड़ दिता। दौलत खान ने बड़े मिन्नत की थी, आख्या होड़ नहीं लेना। उतों वे ही नदी ते आए, बाला नाल है, साहब जी ने आख्या बालिया तू साडे बस्तरां दा ध्यान रख।

अजूनी सैभंगुर प्रसाद अजूनी सैभंगुर प्रसाद तक जदो गुर प्रसाद तक जदो आवाज आई ता गुरु नानक सच्चे पातशाह दी

साहब जी कहन लगे जे तेरा पानी सूरज तक पहुंच सकदा तां क्या साडा पानी करतारपुर खेती तक नहीं पहुंच सकदा। पंडित जी कर्म कांडा विच कुछ नहीं जे पिया, जे परमेश्वर दा नाम नहीं जपोगे और कर्म कांडा विच पाओगे तां इना कर्मा कांडा ने तुहाडा उधार नहीं करना, उधार तां प्रभु दे नाम ने करना। साथ सिखत बोलो श्री बाबा नंद सिंह जी महाराज कलेरां वाले पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी आप क्या करदे सन भाई, आ दुनिया दे जितने कर्म कांड जप तप हन ना, ए सारियां सिफरां हन, सिफरां ए सारे जीरो हन, और बेशक एक कागज उत्ते जितने मर्जी जीरो पा दे उना दी कोई भी मुल नहीं है जब तक उना दे अगे एका ना पवे। जे एक पावेगा, एका लिखेगा और उस तो बाद जीरो पावेगा ते दस बन जाएगा, दो जीरो पावेगा सौ, तीन पावेगा हजार। इसे तरह दुनिया दे जितने कर्म कांड हन, जप तप हन, बिना नाम तो जे ए करेगा ता तेरे मन नू हंकार हो जाएगा और कीते

0: हे मेरे मन, उस करते पुरख दी आराधना कर। हे मेरे मन, उस करते अकाल पुरख दी उस्तत कर। वड़ियाई कर, कीड़ा करता अकाल पुरख जिन्हें सारा जग बनाए, जिना सब कुछ कर करा रहे ओ करता, जो सब कुछ कर सकता है, जो सब कुछ करने योग है, उस करते पुरख दी सलाघा कर। हे मेरे मन, एक मिनट भी उस करते पुरख नू विसारना, याद रख ओ करता पुरख जिसने तेनू संसार ते भेजे है, तू ओदी वड़ियाई विच जुड़ जा, ओदी बेअंतताई विच लग जा।
1: मन मेरे करते नू सलाघा।

करो सदा प्रभ अपने मन मेरे करते नू सहलाए। होर वस्तुआं दी बड़ी उस्तत कर दे, ऐ चीज बड़ी खूबसूरत, ऐ चीज बड़ी चंगी, ए भोजन बड़ा सोहना बने, बड़ा स्वाद लै, ऐ वस्तु बड़ी ही अच्छी है, एदे वर्गी संसार ते कोई भी चीज नहीं। होर बड़िया उस्तां कर दे, बड़ा कुछ आखद, मनुख की भी उस्तत बड़ी कर दे, पर जिदी उस्तत करन योग है उसी कदी कीती ही नहीं, कदी उसनू सलाया ही नहीं कि असली जिहड़ी उस्तत करन वास्ते सी संसार ते आए हां उते कीती ही नहीं। ऐसा ही सवाल मरदाने दे अगे साहिब गुरु नानक साहिब ने कीता, आखिया मरदाने आ की करन, आखद साहिब जी लोकां दी उस्तत करन ते अपना घर दा गुजारा चलाना, ते साहिब आख लगे मरदाने आ लोकां दी उस्तत ना कर, आ मैं तेनू अकाल पुरख की उस्तत करनी दसा, अकाल पुरख की उस्तत कर, यह तो उस्तत झूठी है लोगों की करनी, अकाल पुरख की कर, ए सच्ची उस्तत थी, ए उस्तत करेगा कभी भी भुखा नहीं रहेगा, यह गुरु नानक का वर होए मरदाने नू। साहबा ने उस्तत दे विच ला दिता, आप भी जुड़ जाते सन ते मरदाने नू भी जोड़ लेंदे सन, चल मरदाने आ बाणी आई आ छेड़ रबाब कीर्तन विच लीन हो जाना ते काल पुरख की उस्तत करनी, ओही जोत सानू उपदेश कर रही है, हे मन अकाल पुरख की उस्तत कर, मन मेरे करते नू सहलाए, उस्तत करो सदा प्रभ अपने।

सलल निवास जैसे मीर की ना कटे रुच, सलल निवास जैसे मीन की ना कटे रुच, दीपक प्रदास कटे प्रीत ना पतंग की, उस जैसे त्रिपत ना मध्यप को उड़ते आकाश, आस कटे ना बिहंग की, कटाकन को

आठ दम को छिपरो होए ओ लखीना भूलना तन्ना त्याग के प्रीत चरण को बीरा नीत

कितने वरदान मिले सेवा करके। गुरु अमरदास ने माणिया दा मान, नितानिया दा तान, नियोटिया दी ओट, नियासरिया दा आसरा, निगत्या दी गत, निपत्या दी पत, निधरिया दी धिर, एडिया बख्शिशा कितों मिलिया, सेवा करके मिलिया। जिन सेव्या तिन पाया मान, जिन्हों ने सेवा की गुरु नानक दे दर दी, ए मान सत्कार उन्हां नूं ही प्राप्त होया।

तुर्क दुष्ट सब शह किए हर नाम उचारा तिन आगे कोई ना ठहरे हो तिन आगे कोई

0: कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम न जाने तेरा। मैं तन जबान तू है मेरे स्वामी, मैं तुझे आगे अरदास, मैं होर थाओ नहीं जिते करो बिनंती, मेरा दुख सुख तुझ ही पाते। सुनी अरदास स्वामी मेरे, सर्ब कला बनियाई, प्रगट भई सगले जुगे अंतरे, गुरु नानक जी वडियाई।
1: आओ अपनियां बिस्तियां कागर करिए, दसना ते सतनाम श्री वाहे।